तेनु परमेश्वर नजर आवेगा इन्हा भगतां दी तरह। पर एक वरी तू भी कह उठेगा, ऐ भाई जानी जानी रे राजा राम की कहानी, मैं भी परमेश्वर दी कहानी नु जान ले है कि ए संसार परमेश्वर दी बनाई हुई खेड है, परमेश्वर दा अमृत दा बगीचा है।

कतहु सुचेत होय के चेतना को चार किया, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो। साहेब गुरु गोविंद सिंह साहेब जी बहुत प्यारी रचना अकाल उस्तत विच फरमान दी, कतहु सुचेत होय के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो।

आओ भाई, आज दे दिन अरदास करिए। पातशाह, साडे हिरदे विचों नफरत दी आंधी जो चलदी है उस नूं मिटा। बख्शिश कीती सी आप जी ने भाई कन्हैये उत्ते, जिस वेले उसने दुश्मन नूं दुश्मन ना समझिया, फिर तू सिख हो के सिख नाल नफरत करें, गल बनेगी। कदी भी खून नाल खून नहीं तुलदा, पानी पाया ही खून तुलदे। नफरत नाल कदी नफरत खत्म नहीं होई, ओदे उते प्यार दा पाना पानी पाना पएगा। साच कहूं सुन लेहो सबै, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पाए। बाबा गुरमुख सिंह जी एक गल आखदे हुंदे ने, तुसी किसे दे घर चले जाओ, तुसी उन्हां नूं कहो मैनूं प्यार दियो, कोई नहीं देगा। पर जे तुसी खड़ के कह दियो आओ लोको मैं तुहानूं प्यार दियां, हजारां लोग तुहाडे कोल आओ। ये पहल तू करनी है। प्यार असा देना है, लेना नहीं। देवे तो ठीक है, पर असी कहने इन्हें फतेह नहीं बुलाई, असी क्यों बुलाइए। ना भाई, वह नहीं बुलांदा, तू बुला ले, तू प्यार कर, तेरा फर्ज है। हंकार ते नफरत दी आंधी विच ऐ मेरे पातशाह, जिवें तुसी मलम ते पट्टी दे दित्ती सी, मानो गाउंदा गाउंदा यही कुछ कह रहा सी। भावे कोई मोमन वेख रहा है, भावे कोई पहाड़ी राजा है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, पानी मुंह विच देंदा होया इको ही पुकार है, केड़ी

गायत्री को गुपत जप्यो, कौं होय के तुरका पुकारे बांग देत हो, कहूं को कुकाब होय के पुराण को पढ़त मत, कतहूं को

देतो हो, कहूं देवतान के दीवान में विराजमान, कहूं दानवान को गुमान मत देतो हो, कहूं इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी सी, कहूं इंद्र पदवी छिपाए छीन लेतो हो।

अरे सुरों में पीखा खाए ऐसी दरगे मिले सजाए रोवे रामन काला पया सीता लक्ष्मण बिछड़ गया रोवे दसर लंक गवाए जिन सीता आंधी डारू आए रोवे पांडव पे मंजूर जिनके स्वामी रहते हजूर रोवे जन्मे जाख गया एक ही कारण पापी पया रोवे शेख मसा एक पीर अंतकाल मत लाग।

ਐਸੇ ਗੁਰ ਤੋਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਣੀਏ ਸਤਿ ਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣੇ।

और तूफान तो नहीं डरते, साथ सगत बोलो श्री। तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी। हे वाहेगुरु, हे सच्चे बादशाह, मैनू तेरी ओट है।

मन विच तांग होवे के मैं जाके तेरे दर्शन करां। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह, गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दी जिन्हां ने 12 साल सेवा कीती। 72 साल दी उम्र विच बाबा अमरदास जी जदों गुरु अंगद देव पातशाह दे कोल आए ते जदों दर्शन कीता ते मन मन गया। आ मन जिथे मन्ना हुंदा ना ओ उथे इक नजर ते ही मन जांदा, पहली नजर ते ही मन जांदा। जदों बाबा अमरदास जी ने गुरु अंगद देव जी दे दर्शन कीते आख्या मैं गुरु दी पाल कर रहा सां ते अज मैनू गुरु प्राप्त हो गए। उस दिन तो बाद बाबा अमरदास जी अपने घर नहीं गए, गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दी सेवा विच लग गए। रोज गागर दी सेवा करनी, खंडूर साहब तो गागर लैनी, 5 मील तुरदे हुए ब्यासा नदी।

पहले पैरे आपने उठ के तीजे पैरे उठ के तुर पैण, क्योंकि पहले दो पैर आप कीर्तन नाम विच जुड़े रहिंदे, ते जदों तीजा पैर हुंदा

के बादशाह पिट हो रही है हुण इत्थों दी, मैनू माफी दे दे। ते आपने फिर जाना ब्यासा नदी तो जल दी गागर भरनी, सिर ते चुकनी, ते फिर सत्कार दे नाल मन विच पा

गुरु पातशाह इतो हुण पिट हो रही है, माफी दे दे। ते फिर व्यासा वाल तुर पे, गागर जल्दी भरी सिर ते चुकिया। अज एडा मीह पै रहा है, जखड़ चुल रहे हैं।

सच्चे पातशाह चुक चुक जा रहे सात सगत बोलो श्री, क्योंकि जितना आ फल लगता है टैणी नू, ओ टैणी उतनी चुकदी।

पाट जिसका नाम मथुरा है, आप कहिंदा है जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आए। जो भी प्यार नाल मन करके गुरु अर्जन देव पातशाह दा नाम जपेगा, जो एक वरा मन करके प्यार नाल आखेगा धन गुरु अर्जन देव, सारे प्यार नाल जपो धन गुरु अर्जन देव। जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आए। ओ फिर कदे भी गर्भ जूनिया विच नहीं पवेगा, 84 लाख त्रिगट जूनिया तो मुक्त हो जाएगा। जब लो नहीं भाग लिलार उदे, तब लो परम ते फिरते बोताय। मथुरा कहिंदा है पट के जद तक साडे भाग नहीं समझागे, असी संसार विच विचर रहे सन, लेकिन कलयुग दे विच आके सानू जदों गुरु अर्जन देव पातशाह दे दर्शन होए, ते सचमुच फिर उस हरी विच और गुरु अर्जन विच कोई फर्क नहीं है। क्योंकि गुरु अर्जन देव पातशाह गुरु नानक दे पंजवें स्वरूप, पंजवें गुरु नानक धन गुरु अर्जन देव महाराज, और जिस गुरु नानक दी उस्तत गावे जनकाद जुगाद जुगेसर, हर रस पूरन सर्व कला गावे सनकाद साध सिदादक, मुन जन गावे अचल छला गावे गुण तोम अटल मंडलोए, भगत पाए रस जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानी। उस गुरु नानक दे गुण जदों राजे जनक दा दरबार लगिया सी, और उस दरबार विच वड्डे वड्डे रिखी महापुरख तपस्वी जोगी आके राजे जनक दे चरणा दी धूड़ लै रहे सन। क्योंकि भाई गुरदास जी कहिंदे ने भगत वड्डा राजा जनक है गुरमुख माया विच उदासी। राजा जनक जिसने बड़ी तपस्या की, और भगत वड्डा क्यों गिणिया गया है, क्योंकि राजे जनक ने राज विच रह के अपने आप नू माया तो निर्लेप रखे। साथ संगत बोलो श्री। ते भाई गुरदास जी कहिंदे इस वास्ते राजा जनक वड्डा है। ते एक वरां दा जिक्र, राजा जनक देव लोक नू गया, देवते भी लोचते हैं कि कोई जपन वाला साड़ी पुरियां विच चरण पावे। जिस वेले राजे जनक नू देव लैके देवते लैके अपनी पुरियां विच जा रहे सन, ते रस्ते विच बड़े रोण दी कुरलाउण दी आवाज आई। राजे जनक ने पुछया ए कौन रो रहे हैं, तां देवतियां ने दस्या महाराज ए नरक हैं जिथे पए हुए जीव अपने कर्मा दे अनुसार भोग भोग दे, क्योंकि इन्हां जीआं ने जाके संसार ते नाम नहीं जपिया, भगती नहीं कीती। इस वास्ते भगती ना करन करके इन्हां ने अपना मनुखा जन्म जेड़ा हीरे लालां तो भी महंगा सी, जेड़ा स्वास हीरे लालां तो भी महंगे सन, इन्हां ने मिट्टी विच रोल दिते। ताई आखिया बंदगी ना कीती आ हीरा जन्म पाके, जे तेनू मनुखा जन्म वाहिगुरु ने दिता है और तू बंदगी नहीं कीती, तां तू अपने मनुखा जन्म नू कौडियां दे बदले वेच छड़िया, उस स्वासां नू कौडियां दे बदले वेच छड़िया। ताई आखिया

राजे जनक ने आखिया देवतियां ने महाराज ए नरक और इत्थे पए जीवां ने नाम नहीं सी जपिया ना इस वास्ते इन्हां दी आत्मावां नूं तसीहे दित्ते जा रहे। तां राजे जनक ने उत्थे एक घड़ी बह के सत्संग कीता और नरकां दे जीआं नूं मुक्त कराया। ताई आख्या तन तन राजा जनक है जिन सिमरन कियो विवेक एक घड़ी के सिमरने पापी तरे अनेक। एक घड़ी दे सिमरन दे नाल जो राजे जनक ने मन करके उत्थे कीता प्रभु दे चरणा नाल जुड़ के आख्या नरकां दे नरक खाली हो गए उस जपन वाले दी सदके। क्योंकि जिस वेले नाम नूं एक पलड़े विच रखिया धर्मराज ने सत्संग दी एक कड़ी नूं एक पल्ले विच रखिया ते नरकां दे पापियां दे पापां नूं दूजे पलड़े विच ते नाम दे तुल ओ पाप ना तुल सके। सात संगत बोलो श्री साईं नाम अमोल कीम ना कोई जान दो। आख्या साईं दा नाम एटा अमोल है दी कोई कीमत नहीं पा सकदा इसनों कोई तोल नहीं सकदा। ओ राजे जनक दे दरबार विच जिस वेले गुरु नानक दे गुणवान हो रहे सन ते एक रिखी ने आख्या गुरु नानक कलयुग विच आएगा ते क्या राजा जनक जी असी गुरु नानक दे दर्शन कर सकांगे। आख्या क्यों नहीं तू स्वास दसम द्वार ते चढ़ा लै ते असी तेनू एक मठ विच पा देंदे हैं ते धरती पुट के तेनू उस धरती विच दब दिंदे हां। जदों कलयुग आवेगा कलयुग दा समां ते गुरु नानक निरंकार गुरु नानक बन के संसार ते आएगा ते रिखी ने आखिया मैनू मैं गुरु नानक नूं किवें लब्बांगा। तां राजा जनक कहण लगा तेनू गुरु नानक नूं लब्बण दी लोड नहीं गुरु नानक आपे ही तेनू लब लेगा। सात संगत बोलो श्री ते जदों फिर समा बदलिया कलयुग दा समा आया ते गुरु नानक जदों पंजवां गुरु नानक बनिया गुरु अर्जन देव महाराज ते जिस वेले संतोख सर जिथे आज पवित्र अमृतसर दी धरती ते संतोख सर दा सरोवर है उसकी खुदाई हो रही सी गुरु अर्जन देव पातशाह टाली तले बैठे सन। इस गुरुद्वारे नूं टाली साहब करके भी नाम प्रसिद्ध है ते जिस वेले सरोवर दी सेवा हो रही सी तां खुदाई दे वेले जदों प्यार वाले खुदाई कर रहे सन ते ओ कई उस मठ नूं जाके लगी ते सिखां ने आके बेनती कीती गरीब निवाज कोई मठ है ते जापदा है उहदे विच कोई रिखी है। साहिब गुरु अर्जन देव महाराज कहण लगे हां इक रिखी है जो राजे जनक दे समें तों साडे दर्शन करन वास्ते पिया है। गुरु अर्जन देव महाराज आए उस मठ नूं एक एक इट अपनी हाथ नाल हटाई किते रिखी नूं लग ना जा ते ओ रिखी एक शरीर दा पिंजर ही रह गया सी। गुरु अर्जन देव पातशाह ने अपनी गोद विच उहदा सिर रखिया मुख ते छट्टे दिते जल दे सिर ते हाथ रखिया ते रिखी ने अखां खोलियां पुछिया केड़ा समां है। तां गुरु अर्जन देव महाराज कहण लगे कलयुग है। कलयुग कमिया रिखी कहण लगा मैनू कलयुग दी तत्ती वाह ना लगे मैनू बचा लो। ते फिर झट ख्याल आया ओह मैं आप ही तां कलयुग विच आउणा चाहुंदा सां कि मैं गुरु नानक दे दर्शन करां उस निरंकार दे दर्शन करां। ते फिर कहण लगा रिखी के कलयुग विच गुरु नानक ने आउणा सी। तां गुरु अर्जन देव पातशाह जिन्हां दी गोद विच रिखी दा सिर है दसम द्वार तो श्वास तले उतरे। गुरु अर्जन देव पातशाह ने सिर ते हाथ रख के श्वास उतारे ते पुछदा मैं गुरु नानक दे दर्शन करने हैं। कोल खड़ोते बाबा बुढ़ा जी कहन लगे पंजवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव महाराज दी गोद विच ही तेरा सिर है रिखी। सात संगत बोलो श्री। उस वेले जिस वेले रिखी ने गुरु अर्जन देव पातशाह दे दर्शन कीते कहन लगा सचमुच
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਹੀ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਰਿਖੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੂਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨ ਆਇਓ। ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਜਪੇਗਾ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਜੂਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੂਨਾ ਤੇ ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਤ੍ਰਿਕਟ ਜੂਨਾ ਵਿਚ ਨਾ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਜੋ ਜਪੇਗਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਪੀਏ।

जप गोविंद गोपाल लाल राम नाम स्मर तो जीव।

0: गुरु रामदास, धन गुरु अमरदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास। मैं ठीक हो गया, मेरा रोग तो उतर गया, मैं चल फिर सकता। धन रजनी, एक तेरे सिदक का फल है जिहड़ा अज मैनू नवा जीवन मिलिया। रजनी रजनी, मैं ठीक हो गया, मैं चल फिर सकता। रजनी, मेरा रोग तो उतर गया। रजनी, मैं ठीक हो गया।
1: कौन हो तुसी?
2: मैं कौन है? तुसी मैं पछाणिया नहीं रजनी जी?
1: मैं कहनी, मेरे पति जिन्होंने मैं इतने छटके गई सी, कितने ने, कितने ने मेरे पति?
2: मैं ही थोड़ा पति है रजनी जी, थोड़ा पिंगला। तुसी मैं चिंतपुर नहीं लग गए, तुसी मैं संजी के दर्शन कराए, तुसी मैं गोंदवाल लग गए, तुसी मैं छबीर वाले बाबा जी तो पानी पिया। मैं थोड़ा पति है, मैं थोड़ा पिंगला है रजनी जी, मैं थोड़ा पिंगला।
1: यह तो ठीक है, पर थोड़ा रोग किवें ठीक होया?
2: ये सारी करामात इस जल्दी है। थोड़े जान तो बाद मेरे कन्ना फिर वही आवाज आई, कागो हंस करे। तो मैं रिड़दा रिड़दा ए छपड़ी के कंडे ते आ गया और टाणी फड़ के पानी च उतर गया। जब बाहर आया तो मेरे सारे जख्म धोते पे सन।
1: तुसी टाणी फड़ के पानी च गए सी ना?
2: हाँ।
1: केरे हाथ नाल?
2: ऐस नाल।
1: अच्छा, तां फिर तुसी ऐस हाथ में भी पानी च पाओ, मैं अपनी अखां नाल इस जल दा चमत्कार देखांगी।
2: आओ मेरे नाल।

0: हे परमात्मा, तू मेरी पुकार सुन ले। माता के दरबार श्वेत सपना साकार कर देता। तेरी लीला ब्रह्मपारे। तन गुरु अमरदास।
1: तन गुरु रामदास। रजनी
0: स्वामी,

तेरी कुदरत तू ही जाने और ना दूजा जाने, तेरी कुदरत तू ही जाने और ना दूजा जाने। जिसनु कृपा करे मेरे प्यारे सोई तुझे पछाने, तेरे भक्ता को बलिहारा खान सुहावा सदा प्रभु तेरा। रंग तेरे अपारा, रंग तेरे अपारा, खिन में और खिने में औरा अचरज।

काश हम गुरु नानक के शरीर के दर्शन करते, उनके चरणों की छोर प्राप्त होती, कितने बड़े भाग होते हमारे। गुरु नानक शरीर में नहीं है तो कुछ आनंद कम आता। गुरु अर्जन देव जी इस भेद को खोलते, भाई गुरु नानक की वाणी तुम प्यार से पढ़ोगे, श्रद्धा से वाणी के दर्शन करोगे तो उसमें से ही गुरु नानक के दीदार ऐसा लगेगा जैसे प्रत्यक्ष गुरु नानक के वचन सुन के आए।

जागता है, गुरु सूरज के माफिक है। ये बात अलग है, हम लोग खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं। ऐ सूरज तुम्हारी रोशनी नहीं चाहिए, फिर कहें सूरज हमारे घर में नहीं आया, भाई भूल तेरी। सूरज तो हाथ दे रहा है, दस्तक दे रहा है, तेरे दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन तुमने दरवाजे बंद कर रखे हैं। गुरु नानक तो तेरे दरवाजे के बाहर खड़ा है, पर तुमने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दरवाजे खोल।

मेरे मन विच तांग होवे के मैं जाके तेरे दर्शन करा। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह, गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दी जिन्हों ने 12 साल सेवा की थी। 72 साल दी उम्र विच बाबा अमरदास जी जदों गुरु अंगद देव पातशाह दे कोल आए ते जदों दर्शन कीता ते मन मन गया। आ मन जिथे मन्ना होंदे ना ओ उथे इक नजर ते ही मन जांदे, पहली नजर ते ही मन जांदे। जदों बाबा अमरदास जी ने गुरु अंगद देव जी दे दर्शन कीते आख्या मैं गुरु दी पाल कर रहा सां ते अज मैनू गुरु प्राप्त हो गए। उस दिन तो बाद बाबा अमरदास जी अपने घर नहीं गए, गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दी सेवा विच लग गए। रोज गागर दी सेवा करनी, खंडूर साहब तो गागर लैनी, 5 मील तुरदे हुए ब्यासा नदी।

पहले पैरे आपने उठ के तीजे पैरे उठ के तुर पैण, क्योंकि पहले दो पैर आप कीर्तन नाम विच जुड़े रहिंदे, ते जदों तीजा पैर हुंदा।

खुंजाया जो सेवा तो बिना चला गया। आज 12 साल का आखिरी दिन है, आज एडा चखड़ चल रहा है, एडा मीह पै रहा है कि रस्ता नजर नहीं आउंदा। आप पुठी प्यारी तुरदे हुए अद्धे रस्ते पहुंचे।

क्योंकि मन विच श्रद्धा सी कि ए जल मैं गुरु वास्ते लै के जा रहे ते सच्चे पातशाह ने इस जल दे नाल इशनान कर जदों जल दी गागर ना टिकन दिती खड़ाक होया अंदरों जुलाहे ने पुछया।

रामदास सरोवर नहाते सब उतरे

नहीं तुझे है बदो पुरख बिधाते आंखों सुहे जिठे सबे थाओ नहीं तुझे है बदो पुरख बिधाते आंखों सुहे वसदी सगन अपार अनूप रामदासपुर वसदी सगन अपार अनूप रामदासपुर हरिहा नानक कसम।

असल इच्छा ते है मालिक तेरे दर्शना दी। असल ते मैं तेरे दर्शन करना चाहुंदा हां। ए जाप ता ही मैं करना चाहुंदा हां कि मैनू तेरे दर्शन हो जाए। इसे कारण करके गुरु अर्जन सच्चे पातशाह परिपूर्ण परमात्मा दे चरणा विच बेनती कर रहे हैं कि ऐ मालिक एक जेवा होन करके मैं तेरे सारे गुण नहीं गा सकता, क्योंकि तू ते जल थल और मैयल दे विच पूरा पूरा पूरा पूरा वर्त रहा है। जिथे किथे देखदा हां तू ही तू है। ते मालिक जिथे मेरी जेवा एक है उथे मेरा मुंह भी एक है। मुख हर आराधे मेरा राम, ता जो जम दी मार्ग ते मैनू कोई दुख ना दे। कहंदे ने जमा दी मार तो बचन वास्ते मैं तेरा नाम जपना चाहुंदा हां। कहंदे ने जिथे किथे देखदा हां तू ही तू दिखाई देंदा है, और तेरा जाप कर करके मेरा परम मोह ते जेड़े मेरे विकार हन ओ सारे नठ जांदे हन। जिथे किथे देखदा हां तू ही तू दिखाई देंदा है। कहंदे ने जदों मैं तैनू याद करदा हां ते मेरे मन दे विच एक आस लगी रहिंदी है, हे मालिक दिन ते रात दे विच 24,000 श्वास हन, ते श्वास दे विच एक एक श्वास दे विच 4 वारी भी तेरा नाम जपा ते तां भी ओ पूरा नहीं हो सकता। इस कारण करके मैं तेरे चरणा विच बेनती करदा हां कि मैनू लख जेवा दे दे मैं तेरे गुण गांदा गांदा तेरे दर्शन कर सका। गुरु अर्जन सच्चे पातशाह फरमान कर दे हन।

ना कोई परेशानी, ना जिम्मेवारी, ना कोई बोझ, बाप जाने। और चंगा बच्चा जिन्हू बनना आ गया वो बाप दी हर शह का अधिकारी, प्यार का भी अधिकारी, दुलार का भी अधिकारी और माल का भी अधिकारी। जो कुछ बाप का है वह पुत्र का ही तो है, पर चंगे पुत्र का। ते जे बच्चा नलायक हो जावे ते कई बारी बाप ऐसा भी कहंदे ने कोई नहीं चल खा तू इसे तरह, मैं फारस खंदी लिख देंगा, मैं मर जावा तेनू कौडी ना मिले मेरे माल विच। ते जे बच्चा प्यार वाला हो, आग्याकार हो, ते कई बारी ऐसा भी हुंदा है उहदे कोलों सहजे खुनामी हो जांदी। ते बाप कहंदा कोई गल नहीं बच्चा इहदी नीयत फतूर नहीं है, इहदी नीयत खराब नहीं, बचपना है, कोई गल नहीं। ए जेड़ी गलती हुई है इहदी अकल दी डगमगाहट है, ध्यान देना। बच्चा जिस वेले मां दी गोद विच हुंदा है उहनू कोई चीज पकड़ाओ पकड़ भी तां नहीं सकदा, मां नूं ही ख्याल रखना पैंदा। ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਖੀਰ ਆਧਾਰ ਬਾਰਕ ਜਬ ਹੋਤਾ ਬਿਨ ਖੀਰੇ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਮਾਤਾ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਤਬ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਈ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਕੜਦਾ ਏ, ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਪਕੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਉਂਦੀ, फिर भी चीजा हथों डिग जांदियां ने, कई बारी उल्टी सुल्टी पकड़ लैंदा, कई बारी पकड़दा है अपने शरीर ते मार पैंदा, पता नहीं पकड़न दा। फिर मां बाप दा चाह उठदा इहनू खड़ा करो, पैरां ते खड़ा करो। हर मां बाप ये चाहुंदे ने कि साडा बच्चा छेती तो छेती अपने पैरां ते खड़ा हो, लेकिन ध्यान देना अपने पैरां ते खड़ा होके भी कई बारी बच्चा चाहुंदा कि बाप उंगल पकड़ी रखे, बड़ी वधिया गल। आसरा बाप दा बणिया ने, बाप का आसरा बनिया रवे ती अपने पैरां ते खलो के निश्चिंती बड़ी, नहीं तो जिसले बच्चा खलोंदा है मां फड़दी है हथां तो खड़ा कर देंदी, ते फिर वो चाहुंदी अपने पैरां ते खड़ा होवे, छड़ देंदी तो बच्चा डगमगा डगमगा जांदा। लत्तां जिहड़ियां ने वो साथ नहीं देंदियां, कमजोर लत्तां अभ्यास तो हीणियां लत्तां साथ नहीं देंदियां, अजे उन्हां नूं सीधा खलोना नहीं आया, डिग पैंदा। संभलण का बड़ा जतन करदा फिर भी डिग पैंदा, ते जे वह बाप की मां की उंगली पकड़ी रखे नहीं डिगदा। पाए नहीं बंदे दी अकल दी गल है, मालक दी उंगल पकड़ी रखे गुरु दी उंगली पकड़ी रखे नहीं डिगदा, डिगण दा डर मिट जांदा। बल्कि मालक दी उंगली छड के तां इतनियां गलतियां हो जांदियां ने, चंचल मत बारक बपरे की सर्प अगन कर वेले, मां इधर उधर हो गई, बच्चे ने चूल्हे विच हथ पा दिता, अग नूं हथ पा लिया, उहनूं सोहणी लगदी, अग सोहनी लगती, फुल भी सोहना लगता है, अग भी सोहनी लगती है, लेकिन हाथ साड़िया ते पता लगा ये फुल नहीं सी, अग साड़न वाली चीज है पता लगा। पर जे कि मां सिर ते आ गई है उन्हें छेती नाल खिंच के पिछा कर ले, अग च हाथ पाउण नहीं दिता। सप सोहना लगता है, वेखन नूं खूबसूरत लगता है, उहदियां कौडियां उहदे उत्ते कुदरती प्रिंट ऐसा प्यारा लगता है, बच्चा उस नूं हथ पाउंदा है, यह गल वखरी है कि सप की बिरती च अपनी अखी वेखी ये चीज है कि बच्चे ने चुके झोली च पा लिया, सप ने कुछ नहीं किया। बालक की साधारणता, बालक के भोलेपन के उत्ते सप नूं भी तरस आ गई कि यह जे मैनूं फड़दा पिया इहदी नीयत खराब ने। सप भी समझदा, पशु भी यह समझदा, जहरीला पशु भी यह जानदा है कि इस बच्चे ने मैनूं चुकिया फड़िया झोली च पा लिया, इहदे मन च मेरे प्रति कपट नहीं, इहनूं कुछ चंगा लगा, जो कुछ भी है वह सप की साइकालोजी अपनी थां ते है, लेकिन उसने सप ने बच्चे नूं डंगिया नहीं। अपना आपा बचाउण वास्ते उह झोली चों निकल गया, छाल मार के निकल गया, लेकिन बच्चे नूं कुछ नहीं किया। लेकिन मां नूं तां इह ख्याल नहीं ना कि सप लिहाज करेगा, मां जानदी है सप दा काम है डंग मारना, ते जे बच्चा डंग वाले डंग मारन वाली चीज नूं हथ पाउंदा है ते मेरी जिम्मेवारी है कि बच्चे नूं बचाउणा। साहिब कहंदे ने चंचल मत बारक बपरे की सर्प अगन कर मेले, हथ नाल फड़दा सप नूं अग, माता पिता कंठ लाए राखे, मां प्यो फड़ के धू के छाती नाल लल देने की करदा, ज्ञान देंदे ने इह फड़न वाली चीज नहीं है, फड़न वाली चीज इह नहीं है, फुल दे देणगे हथ, फड़न वाली चीज यह है, कोई खिडौना दे देंगे,
फड़न वाली चीज ए है। ये ख्याल करना बच्चे ने खिडौना ले लिया, खिडौना बड़ा प्यारा है, फुल बड़ा प्यारा है, हुण ओदे कोल मां बाप नूं खतरा कोई नहीं, कोई हर्ज नहीं, फुल पकड़ी रखे, खिडौना पकड़ी रखे, लेकिन बच्चे नूं की हो गया, बच्चा वो खिडौना ते फुल लैके मां दी गोद छड़ गया, बाप दी गोद छड़ गया, अगां पिछा हो गया, खेड़दा फिरदा, मां आवाजां मारदी है ते वो पकड़ाई नहीं देंदा, अगे अगे खिडौना लैके बच्चा है, पता नहीं उन्हूं डर है, मां खो ना लवे, कैसी कह, अनज्ञानता की गल है कि जिस मां ने खिडौना दिता, जिस बाप ने दिता, उन्हें खोन वास्ते थोड़ा दिता, वो होर भी देवेगा, लेकिन बच्चा घबराया है कि मेरे को खिडौना खुश ना जाए, अगे अगे बच्चा है, मगर मगर मां प्यो ने कोई नुकसान ना उठा, कोई गलत ना, इहदे कोलों गलत क्रिया ना हो जाए, खिडौना सुट ना पवे, या इसे खिडौने की गलत वरतों करके कोई नुकसान ना उठा पवे। लेकिन दूजा बच्चा एक होर भी है, उन्हें खिडौना ले लिया ते मां की गोद नहीं छड़दा, मां कहती है जा तू हुण खिडौने नाल खेड़, मैनूं कम करन दे, लेकिन वो मां की गोद नहीं छड़ता, खिडौना भी लई बैठा है, मां की गोद च भी बैठा है, ये दोनों आनंद ले रहे हैं, खिडौने का आनंद भी ले रहा है, मां की गोद की निग भी ले रहे, आप भी ले सकते, ऐसे बालक बने रहिए ना, ऐसे चंगे बच्चे बने रहिए, गुरु की उंगली भी पकड़ी रखी, गुरु की गोद भी ना छड़िए, गुरु के बख्शे पदार्थों का भी आनंद लेते रहिए, गुरु की बख्शिया दातों का स्वाद भी लेंदे रहिए, ये नहीं दात लैके खिडौना लैके गुरु नूं छड़ जाइए, प्रभु नूं छड़ जाइए, नहीं ऐसा नहीं, वो तो दयाल है, पिता कृपाल आ गया ए दीनी, बारक मुख मांगे सो देना, जो मंगदा दियो, चंगे बच्चे ते खुश हो गए, दियो इनू जो मंगदा है, जो अरदास करदा दियो इसनू, पर बारक की पे मंगदा है, गुरु नानक बालक बन गए, कहंदे ने नानक बारक दर्श प्रभ चाहे, मोहे हिरदय बसे नित चरना, मैं तो होर कुछ नहीं मंगदा, जो कुछ देवे मेरे पिता जो तेरी मर्जी है दे, पर मैं तो यह मंगना कि तेरे चरणा च मेरा वास्ता बने। और कहंदे ने शास्त्रकार एक छोटी दृष्टांत मात्र गल कहंदे, कहंदे ने मेले च दो भरा अपने बच्चियां नूं लैके गए, बच्चियां ने बापा की उंगली पकड़ी हुई, मेला दिखाया जा रहा है, भांत भांत के पदार्थ उन्हां बच्चियां नूं बाप लैके दे रहे हैं, ते बच्चे खुश होके तमाशा देख रहे ने, पदार्थ छक रहे, बहुत भीड़ विच आ गए, तमाशा बड़ा रौचक है, दो बच्चिया ने तमाशे की रौचकता विच परच के पदार्थ खांदे हुए, हाथ वेले नहीं रहे, निगाह वेली नहीं रही, निगाह तमाशे वाल है, हाथ पदार्थ छकण वाले ने, ते जे माड़े मोटे हाथ खाली होए ने तां एक दूजे दा हाथ फड़ लिया, बाप दा हाथ छड़ दिता, दोवां ने छड़ दिता, भीड़ बड़ी है, बाप दोवां दा हाथ पकड़ के रखना चाहुंदे, लेकिन भीड़ दे विच ओह तमाशा वेखण वास्ते सुतंत्रता चाहुंदे ने, ओह सुतंत्रता वास्ते दोवां ने बाप दी उंगल छड़ दिती, ते भीड़ दे उहनां रेलियां विच उहनां तकियां विच बाप किधरे हो गए, बच्चे किधरे हो गए, ते फिर पल्ले की पै गया, एक बच्चे ने चिंगाड़ा मारनिया शुरू कर दी, रोना शुरू कर दिया, बहुत उची उची रोन लग पे, दूसरा हाणी बच्चा कहिंदा रोंदा क्यों, कहिंदा पिता किथे है, बाप किथे है, हुण की करांगे, तो कहिंदा कुछ नहीं होता, उस बच्चे ने रोने करके चार सियाने बंदियां नूं उन्हां नूं घेर लिया, उन्हां नूं तरह तरह के पदार्थ देंदे, उन्हां चुके मारदे ने, कहिंदे नहीं चाहिए, वह परचाउंदे ने, खिडाउंदे ने, नहीं खेडदे, लेकिन जिहड़ा दूसरा बच्चा नहीं रो रहा, ओदे पदार्थां वल मुंह नहीं कर रहा, बहुत चीक झाड़ा भी नहीं पा रहा, गंभीर जरूर है, ते फिर उन्हूं लै गए ने सेवा समिति वाले, उन्हां ले जाके अपने तंबू च बिठा ले, ओ बच्चा रोई जा रहे, फिर बच्चे बच्चे आपस च लग पे ने, कहिंदा क्यों रोना है भरा, वो कहिंदा रोना इस करके बाप तो विछड़ गया, तेनूं कुछ नहीं हुंदा, कहिंदा बाप आपे लब लैगा, मैनूं कोई घबराहट, उंगल मैं छड़ी गलती मेरी है, पर मैं गलती कर सकना, वो नहीं गलती करेगा, वो लभ लेगा, होर थोड़ी देर तक आया कि आया, मैं तक कोई नहीं रोंदा, मैनू तक कोई घबराहट नहीं, मेरा चंगा बाप मैनू आपे लभ लेगा, मेरे को गलती, मापे को मापे नहीं होंगे, पुत्र को पुत्र हो सकते ने, मैं ओदी उंगल छड़ सकना, वो तो नहीं मैनू छड़ेगा, वो भटकदा फिरदा होना, होर झट तक आया कि आया, हुणे लभ लेगा, मैं ये सच करके जानना, गुरु सानू लभदा फिरदा, असी उंगलां छुड़ा छुड़ा के इधर उधर उत्ते फिरने, ते जे कि असी चंगे बच्चे बनीए, बाप की उंगल छड़िए ही ना, गुरु की उंगल छड़िए ही ना, छड़ देने उंगल, ते कई बार ऐसा भी होंदा जूना च भटक जाने, वह तो मेले च भटक गए ना, ते उंगल पकड़ी हुई है, तो तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड़ लडाया,
गलतियां हुई तू बसता चला गया भूले चूके बारक तू हर पिता माया तेनू चंगा लगना है ता बड़ा औखा चंग सुहेला कहन कहावन तेरा बिखम पावन तेनू पा जाना है ता बड़ा औखा चंगा बच्चा बनना है ता बड़ा औखा पर मैं तेरे ते मान करना तेरा पुत्र हां हो मान तान करो तेरा हो जानो आपा सब हूं मत सबे ते बाहर बे मोहताज बाबा पिता हो जानो नाही पिताजी मेनू आउंदी नहीं समझ नहीं आउंदी तेरी जुगत की है मेरे को धारण नहीं की जाती बच्चा अजे बहुत छोटा अनजान है बंधन मुक्त संतो मेरी राखे ममता बंधना तो छुड़ाउन वाला मेरा सतगुरु मेरा वाहेगुरु फिर भी ममता करदा मेरा बड़ा ख्याल करदा पए कृपाल ठाकर रहो आवन जाना मैं उंगली पकड़ ली मेरी भटकना मुक गई उंगली छुट जाती मैं जूना च भटक जाना सृष्टि दे इस मेले विच मैनु भटकना पले पै जाती लेकिन गुरु की उंगल पकड़ लेना मेरा आना जाना भटकना जमना मरना मिट जाता मैं टिक जाना उस टिक जाने वास्ते गलतियां तो होंदिया ने पर खिमा मंग लईए गोदी च बैठ जाइए पदार्थ भी नहीं चलीए मौजा भी नहीं चलीए मालक दी निग भी प्राप्त रहे ओदी जुगत भी लैण दा जतन करदे रहिए ओदी सिखिया भी लैण दा जतन करदे रहिए ते फिर कर उपदेश छिड़के बहु पाती बहुर पिता गल लावे पिछले औगण बख्श लए प्रभ आगे मार्ग पावे।

आपे ही सब आप है प्यारा, आपे थाप उथापे, आपे वेख विगसदा प्यारा, कर चोज वेखे प्रभ आपे, आपे वन त्रण सबत है प्यारा, आपे गुरमुख जापे, जप मन हर हर नाम रस ध्रापे, अमृत नाम महारस मीठा, गुर शब्दी चख जापे, आपे तीरथ तुलहड़ा प्यारा, आप तरे प्रभ आपे, आपे जालो ली हर आपे, आप अभुल न भुलई प्यारा, दूजा अवर न जापे, आपे सिंगी नाद है प्यारा, धुन आप वजाए आपे, आपे जोगी पुरख है प्यारा, आपे ही तपतापे, आप

आपे धरती आप है राहत आप जमाए पिसावे आप पकावे आप भांडे दे परोसे आपे ही बैखावे आपे जल आपे दे छिंगा आपे चुली भरावे आपे संगत सर...

कतहु सुचेत होय के चेतना कुचार कियो, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो, कतहु भिखारी होय के मांग तू फिरत भीख, कहु महादान होय के मांगो धन देत हो, कहु महा

कहूँ देवतान के दीवान में विराजमान, कहूँ दानवान को गुमान मत देते हो। कहूँ इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी से, कहूँ इंद्र पदवी छिपाए छीन लेते हो। कतहूँ बिचार

कऊ शस्त्रधारी कऊ विद्या के बिचारी कऊ मारत आहारी कऊ नार के नकेत हो कहू देव बानी कहू सारधा भवानी कऊ मंगला मेड़ानी कऊ श्याम कहू सेत हो।

पावन पवित्र शब्द कबीर जी महाराज दी पवित्र बाणी दा है। साहिब गुरु ग्रंथ साहिब विच कबीर जी ने जो कुछ उन्हां नाल समाज ने कीता, वड्डियां लोगां ने कीता, ओदा जिक्र कर रहे हैं। कहंदे ने कि बंदगी करदा हां ओदी महान कृपा नाल, सिमरन करदा हां, भगती करदा हां, पर लोकां नूं बर्दाश्त नहीं हुंदा। लोग समझते ने एक नीवी जात का होके लोग इन मथे टेकते ने, हैं ये क्यों? बंदे का सुभा है, बंदा किसी की वड्याई वेख के बर्दाश्त नहीं करता, किसी की प्रभुता वेख के बर्दाश्त नहीं करता। कबीर जी नूं ए सजा दिती गई कि इनू पैरां नूं बेड़ियां, हथां नूं हथकड़ियां पाके गंगा विच सुट दिता जावे। बहुत गहरी बड़ी पवित्र गंगा जिदा अमृत वर्गा जल लोग लैके अपने धन भाग समझते ने, ते बंदगी वाले पुरुष नूं गंगा विच सुटन लगे। कबीर जी ने साहिब गुरु ग्रंथ साहिब विच जो कुछ उन्हां नाल बीतिया ओदा जिक्र कीता है। पर कहंदे हन मेरा मन मजबूत सी, क्यों? मैं उस मालिक दे पावन चरण अपने हिरदे च वसाए ने, जिन्हां ने उस वाहिगुरु ते ओट रखी, जिन्हां ने ओदा आसरा लिया, उन्हां नूं तत्ती वाह नहीं लगदी। आओ प्यार नाल।

कबीर जी महाराज ने कैसी बात कही, कहंदे ने हाथी तां नमस्कारां पिया करदा, हाथी अपनी ड्यूटी नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा, जेड़ा राम मेरे च बैठा होया ओही हाथी च बैठा होया। वांकेर दे बसे भगवान, कहंदे ने मैं हैरान हां भई मैनू सजा क्यों मिल रही, ना मैं चोरी कीती, ना मैं डाका मारिया, ना मैं कोई कतल कीता, कोई गलत काम ही नहीं कीता, सजा किस गल दी। क्या अपराध संत है कीना, बांध पोच कुंचर को दीना, बांध पोट कुंचर को दीना, कुंचर पोट ले ले।

थारा किवन कि नहीं निवल भयंगम साधे मोहे दीन हर हर आराधे तेरा भरोसा प्यारे आन न जाना वेसा कि नहीं ग्रह तजवन खंड पाया कि नहीं मोन अवधूत सदाया कोई कह तो अनन भगवती मोहे दीन हर हर ओट लीती।

0: You're listening to CCAP Radio.
1: एकुंकार सतनाम करता पुर निरपाव निर्वैर कालमुद तजुनी से भंगु प्रसाद जब आज सच जुगा सच है भी सच नानक होसी भी सच तन गुरु अमरदास
2: निथाव्या दे थाओ बाबा जी असी भी उन्हें दर्शन करन आया किथे मिलेंगे
1: सचखंड विखे
2: सचखंड
1: हां बेटी गुरु अमरदास जी स्वर्गपुरी जा विराजे ने ता फिर साडे पागा च उन्हें दर्शन नहीं निराश ना हो बेटे उन्हां दा रूप गुरु रामदास जी तुंग पिंड नेड़े संतोख सर दी सेवा करा रहे ने
2: तुंग पिंड
1: हां तन गुरु अमरदास तन गुरु रामदास
2: तन गुरु अमरदास
1: तन गुरु रामदास
2: किन्नी सोनी था है तुसी दो घड़िया आराम कर लो ते मैं किसी पिंडो जाके कुछ खान नु लेनी हूं नाली पता कर लेंगे तुम फिंच किन्नी दूर है अच्छा
1: छेती आना तन गुरु रामदास

तक हुक्म पछाने सुख होवे दिन राती का हूँ।

0: हे परमात्मा, तुम्हारी पुकार सुन ली, माता के दरबार श्री के सपना साकार कर देता। तेरी लीला ब्रह्म भारी, धन गुरु अमरदास,
1: धन गुरु रामदास। रजनी
0: स्वामी
2: नस तो जाए सरावत।

0: तू तान्य पुत्र ते तान्य तेरी भक्ति। नानक भक्ता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास।
1: नानक भक्ता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास।
2: बेटी,
1: पिताजी,
2: मैं क्षमा कर दे बेटी।
1: पिताजी, माँ,
2: बेटी, मैं बड़ा शर्मिंदा।
1: इतना न को पिताजी।
2: हाँ बेटी, मैं वैसा तू सच ही ऐसी जिस परमात्मा से तेरा विश्वास, वो सच में सर्वशक्तिमान, वो दिन लीला परंपरा है।
0: राजा दूरीचंद?
2: नहीं संत जी, सिर्फ दूरीचंद को मैं अपने अहंकार के कारण राजपाठ के लायक नहीं रहा। हूं मैं वही राज बना लीजिए।

0: तू मेरे पति नु नवा जीवन मिले साथ ले कोई था सुलखनी।
1: रजनी ठीक कहंदी है राजा दूनी चंद, ऐसी सारी तीर्थ यात्रा ते तपस्या दा फल समुचे तौर ते ऐसे स्थान ते मिले। ए धरती बड़ी पावन है, एनु ऋषिया मुनिया दा वरदान है। ए बेरी दुख पंजनी बेरी है, ते ए छकड़ी अमृत दा कुंड है।
2: अमृत से इसे पूछते गुलाम दास जी ने पहला टक लगा के इस अमृत सरोवर का रूप दिता, जिथे अज लखा इंसान स्नान करके मन निर्मल के तन पंचन करते हैं। की हिंदू की मुसलमान की सिख की ईसाई अमृत सरोवर के चौहान कूटा वाल खुले दर हर एक लिए सदा ही खुले रहते हैं।